और ग्रहों की गति का नियम इस तरह था कि अपना सौर ग्रह के पहुंच का नियम कॉपरनिकस है और